डोनाल्ड ट्रंप जंग से तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि कम अज कम अभी के लिए ये खत्म हो जाए। दरियसना रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि रूबियो ने ईरान की जानिब से हमले में पहल की सूरत में अमरीकी हमलों को खारिज अज़िम्कान करार नहीं दिया। जापान के कुछ हिस्सों में एक और दिन खतरनाक गर्मी पड़ी है। फुकुओका प्रीफेक्चर में बुध के रोज दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज कर गया। फुकुओका एयरपोर्ट पर दर्जे हरारत 40.4 डिग्री था। मगरबी जापान में कई दीगर मकामात पर 39 डिग्री से ज्यादा का दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। कुमामोतो प्रीफेक्चर के कुछ हिस्सों में भी शदीद गर्मी पड़ी। ये प्रीफेक्चर जुलाई के अवाखिर में आने वाले एक ताकतवर जलजिले के बाद बहाली की जानिब गामजन है। दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत यात्सुशिरो सिटी में 39.2 और कुमामोतो सिटी में 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड था। बुध को जापान के 47 में से 37 प्रीफेक्चरों के लिए हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी किया गया। हुकाम का कहना है कि लोग एयर कंडीशनर इस्तेमाल करें और मुनासिब मकदार में पानी और नमकियात इस्तेमाल करें। समंदरी तूफान सोदेल जापान के जनूब मगरबी इलाकों अमामी और ओकिनावा से दूर हो रहा है, लेकिन तूफान के असरात बरकरार रहने का इम्कान है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो मूसलाधार बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने, सैलाब और नशेबी इलाकों में दरियाओं में तुगयानी के साथ साथ बुलंद लहरों और तुंद तेज हवाओं के खिलाफ इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अमामी और ओकिनावा के इलाके बज़ाहिर पहले ही तूफान के जोन से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन बरसाती बादल अब भी इन इलाकों पर मंडला रहे हैं। जुमेरात की दोपहर तक के 24 घंटों में ओकिनावा प्रीफेक्चर में 120 मिलीमीटर तक और कागोशिमा प्रीफेक्चर के अमामी इलाके में 100 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई की गई है। तेज़ हवाएं जारी रहने की भी पेशगोई है। अमामी और ओकिनावा के इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा 83 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल सकती हैं और झकड़ों की रफ्तार 126 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। ओकिनावा प्रीफेक्चर में 7 मीटर तक और अमामी के इलाके में 6 मीटर तक बुलंद लहरें उठ सकती हैं।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापानी हुकूमत ने मशरक वस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए बुध को नए मनसूबों का एक पैकेज मुरतब किया है। इन मनसूबों में एक मुतबादल पाइपलाइन की तामीर के लिए इमदादी प्रोग्राम शामिल है जो जापान को अपनाए हरमस से गुजरे बगैर खाम तेल हासिल करने के काबिल बनाएगा। जून में जापान की वजीर आजम ताकाइची सानाए ने सरकारी अहदेदारों को मशरक वस्ता की सूरत हाल के जवाब में तवानाई सलामती के मनसूबों के लिए एक जामे पैकेज तैयार करने की हदायत की थी। पाइपलाइन की तामीर के लिए इमदादी प्रोग्राम के साथ साथ हुकूमत खाम तेल के एक जखीरे के लिए भी इकदाम करने का इरादा रखती है जिसे नफ्था बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फॉसल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत हिफाजती इकदाम यकीनी बनाते हुए जौहरी तवानाई के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर देगी। जदीद तरीन पतले और लचकदार पेरोवस्काइट सोलर सेल्स के साथ साथ जियो थर्मल समेत तवानाई के दीगर काबले तजदीद जराए के लिए सनती बुनियादें तैयार करने के मनसूबे भी तश्कील दिए जाएंगे। वो डेटा सेंटरों में बिजली की बढ़ती हुई तलब से निमटने के लिए कम तवानाई इस्तेमाल करने वाली चिप्स पर भी गौर कर रहे हैं। हुकूमत पावर एशिया फ्रेमवर्क के तहत तेल के जखायर को बढ़ाने के लिए दूसरे ममालिक से वसी ताउन का मुतालबा भी करेगी जो एशिया और दीगर जगहों के ममालिक को माली मदद फ्राहम करता है। जापानी हुकूमत किसानों और माही गिरों को नकद रकूम अदा करने पर गौर कर रही है ताकि उनकी फरोख्त होने वाली पैदावार पर सारिफ टैक्स में कमी के असरात को कम किया जा सके। हुकूमत ने अगले साल अप्रैल से 2 साल के लिए खुराक पर सारिफ टैक्स को कम करके 1% करने का फैसला किया है। इस वक्त टैक्स की अमूमी शरह 10% है लेकिन खाने पीने की अशिया पर यह 8% है। हुकूमत ने मंगल के रोज ऐलान किया कि वो मुतासरा किसानों और माही गिरों

0: को नकद रकम देने का इरादा रखती है ताकि वह सप्लाई अशिया की खरीदारी के वक्त अदा किए जाने वाले सारिफ टैक्स की कमी को पूरा कर सकें। गैर जमाती नेशनल कौंसिल बरए समाजी तहफ़ ने इस बात पर तश्वीश का इजहार किया था कि खेती बाड़ी और माही गिरी में छोटे और दरमियाने दर्जे के ऑपरेटर्स को ज्यादा माली बोझ का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि उन्हें अपने आलात और दीगर साजो सामान की खरीदारी पर पहले की तरह 10% सारिफ टैक्स अदा करना होगा। हुकूमत ने यह भी कहा है कि वो टैक्स कटौती के असरात के हवाले से रेस्तरानों पर भी नजर रखेगी। घर से बाहर रेस्तरानों वगैरह में ताम पर सारिफ टैक्स 10% रहेगा, लेकिन खाना बाहर ले जाने पर यह 1% रह जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि वो खाने पीने का कारोबार चलाने वालों की पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने और टेकआउट पेश करने में उनकी मदद करने पर गौर करेगी। हुकूमत अप्रैल में माफ कीजिएगा हुक्काम अप्रैल में शुरू होने वाले आइंदा माली साल के मुसविदा बजट में मजकूरा मामलात को शामिल करने के लिए आने वाले महीनों में तफसीलात पर काम करेंगे।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। एक अमरीकी मीडिया इदारे का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुबैना तौर पर हाल ही में मुतअद्दिद इत्तेहादी ममालिक के वज़राए ख़ारजा को बताया है कि अमरीका की जानिब से फ़िल वक्त ईरान के ख़िलाफ़ नए हमले शुरू किए जाने का इम्कान नहीं। और जापान के कुछ हिस्सों में एक और दिन ख़तरनाक गर्मी पड़ी है। फुकुओका प्रीफेक्चर में बुध के रोज़ दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर गया। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए NHK.JP/Urdu।

0: 作ったんだ。どうぞ。
1: 綺麗、すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。
2: カイトは本当に料理が上手だね。
0: 僕シェフになりたいんだ。
2: いいね。
3: आज के सबक का कलीदी जुमला है, ये जापानी आमलेट मीठा और मज़ेदार है.
1: この卵焼き甘くて美味しいです。
3: अगर आप इसे याद कर लें, तो इसे इस्तेमाल करते हुए एक से ज़ायद तासीरात का इज़हार कर सकते हैं.
4: この卵焼き की मायनी है ये जापानी आमलेट. तमागो याकी या जापानी तरस का आमलेट खाने के डब्बे, जिसे हम टिफिन भी कह सकते हैं, में तकरीबन लाजमी शामिल होता है. इसे बनाने के लिए अंडों में शक्कर शामिल करके फेंटा जाता है, फिर फ्राई पैन में उसकी पतली तह लगाते हुए रोल किया जाता है. हतमी तौर पर यह ब्लॉक की शक्ल का होता है. अगला लफ्ज़ अमाकते, दरअसल ई इसमें सिफत अमाई यानी मीठा से बना है, और ओइशी के मायनी है मज़ेदार. आज का नुक्ता दो या जायद इसमें सिफत को जोड़कर अपने तासुर का इजहार करने से मुतल्लिक है. ई इसमें सिफत को जोड़ने के लिए उसके आखिरी ई को हटाकर कुते लगाना होगा. आज के मकालमे में अमाई और ओइशी मिलते हैं तो अमाई तब्दील होकर अमाकते बनता है, और उसके बाद ओइशी लगकर अमाकते ओइशी बनता है.
3: तो सामीन सुनिए और दोहराइए.
5: 甘くて美味しいです。この卵焼き、甘くて美味しいです。
3: जी सामईन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा.
4: अब एक पार्क से मुतालिक तासुरात का इजहार करने वाला एक मकालमा सुनिए.
6: उएनो कोएन दो देशता का?
7: हिरोकुते किरेई दे とても良かったです。
4: अब इस मकालमे की तशरीह.
6: उएनो कोएन どうでしたか?
3: उएनो पार्क कैसा था?
4: उएनो कोएन यानी उएनो पार्क, ये टोक्यो में वाकई एक बड़े पार्क का नाम है, और どうでしたか यानी कैसा था, ये तासुर पूछने का एक अंदाज है.
7: हिरोकुते किरेई दे とても良かったです.
3: वसी और खूबसूरत और बहुत अच्छा था.
4: हिरोकुते ई इसमें सिफत हीरोई यानी वसी की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है. किरे दे ना इसमें सिफत किरे ना यानी खूबसूरत की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है. ना इसमें सिफत को अगले इसमें सिफत से जोड़ने के लिए आखिरी ना को दे में तब्दील किया जाता है. तोतेमो योकात्ता देस का मतलब है बहुत अच्छा था.
3: तो सामीन सुनिए और दोहराइए.
5: हिरोकुते広くて綺麗で、広くて綺麗でとても良かったです。
4: अब तासुर के इजहार के कुछ और अल्फाज के साथ मश्क. फर्ज करें कि कोई शख्स आपको बिल्ली की शक्ल की कोई सजावटी चीज तोहफे में देता है. आप कहना चाहते हैं छोटा और प्यारा है. छोटा की जापानी है
5: चीसाई, चीसाई,
4: और प्यारा को कहते हैं
5: कवाई, कवाई,
4: और आखिर में मुखातिब से अपनी बात की तस्दीक के लिए ने लगाएं. सामीन कोशिश करें.
8: चीसकते कवाई देसने, चीसकते कवाई देसने.
4: अब फर्ज करें कि किसी ने जापान की ट्रेनों से मुतालिक आपका तासुर पूछा है. आप कहना चाहते हैं ये वक्त की पाबंद और बासहूलत है. वक्त की पाबंद यानी
5: सेकुना, सेकुना,
4: और बासहूलत
5: बेंडीना, बेंडीना.
4: तो आप किस तरह कहेंगे?
6: सेकुदे बेंडी देसने, सेकुदे बेंडी देसने.
3: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा.
4: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर. आज का लफ्ज़ मकालमे में कायतों ने खाने का डब्बा निकालने के बाद इस्तेमाल किया है.
0: दोज़ो,
4: दोज़ो, आज के मकालमे की तरह खाना या कोई और चीज़ पेश करते वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा यह किसी काम की इजाज़त देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
3: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए.
9: दोज़ो,
10: दोज़ो,
9: दोज़ो.
3: سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے.
5: دوزو.
4: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے.
0: او بینتو دا یو بوکو گا تسکتتن دا دوزو.
1: کیرے سگوئی اتاداکیماس کونو تاماگو یاکی اماکتے اوئیشی دس.
2: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے.
0: بوکو شیف نی ناریتائی ان دا.
2: ایی نے.
3: اب ہاروسان کی زنبیل کا کارنر. آج کا موضوع ہے اوہانامی، یعنی چیری کے پھولوں کا نظارہ.
4: ہرا، آپ جاپان آ کر اوہانامی سے تو یقیناً لطف اندوز ہوئی ہوں گی.
3: جی یقیناً. موسم بہار میں خوبصورت گلابی پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ چہل قدمی کرنا اور ان کے نیچے بیٹھ کر کھانا پینا بہت پر لطف ہوتا ہے.
4: چیری کے پھول مارچ سے مئی تک جنوبی علاقوں سے شمالی علاقوں کی جانب کھلتے جاتے ہیں. ملک بھر کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے پھول کھلنے کے متوقع وقت سے متعلق محکمہ موسمیات کی پیشگوئی اور کھلنے کے موجودہ مرحلے کے اعلانات کے منتظر رہتے ہیں تاکہ اسی لحاظ سے اپنی اپنی پکنک کی منصوبہ بندی کر سکیں.
3: تو زیادہ تر لوگ اوہانامی کے لیے کہاں جاتے ہیں؟
4: کئی لوگ اپنے اپنے علاقے کے باغات یا سڑکوں کے کناروں پر لگے چیری کے درختوں پر پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ اوہانامی کے لیے مشہور مقامات کا رخ کرتے ہیں. ٹوکیو میں اوینو پارک اور شنجوکو گیوین نیشنل پارک مقبول مقامات ہیں. ان کے علاوہ دریائے سمیدا اور دریائے میگورو کے کنارے لگے چیری کے درخت بھی اوہانامی کے لیے مقبول ہیں. رات کے وقت برقی کمکموں سے آراستہ چیری کے درخت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں.